स्थान है ये।

0: बनेंगे, कौन बनेगा? अच्छा, बाप दादा माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना? पसंद है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसके पीट करके कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे, जितना हो सके योग्य आत्माएं देख करके अनुभवी मूर्त बनाओ, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा आते रहो। आप कहेंगे नहीं आओ तो भी आएंगे। अनुभव ऐसी चीज स्वयं को भी अनुभव में पढ़ाओ, जितना जितना अनुभव में और महादानी बन की सेवा में बिजी रहेंगे ना, तो ये जो टाइम वेस्ट होता है ना समस्याओं में, दादियों को भी समय देना पड़ता है और अपने को भी समय देना पड़ता है, वो समय बच जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छी बनाई है हर सोन को चांस।

10 दिन पहले

उनका खाता जमा करने का और परिवार बढ़ते बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों को चांस मिला है हर सोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए, कितना पुण्य का खाता जमा किया। सहज जात का प्रोग्रेस कितने की और संगठन या परिवार के सदस्य।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पत्थर में अपने को नहीं रखो, स्वतंत्र।
0: सुनते रहिए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विश्व परिवर्तन करना है ना, क्या याद रखेंगे? याद रखा मानस से, शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना, मंदिर पे जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना, दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते। जन्म में भी

0: ese.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे कौन रहेंगे? आप ही हो ना, चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतक। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो पाप मेरे कंबाइंड चिंता पाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्यों को पाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए किसके बच्चे? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे बाहर आ जाए, लेकिन बाहर को भी आप रुई बना सकते हैं। बाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो बाहर है वो रुई हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान को साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो लेकिन सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है, तो समय में काम में लगाओ, कहने तक नहीं काम में लगाओ, तो सदा खुश नेमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुश नेमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो, करे चैलेंज।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना, तभी ऐसा करना पड़ा। सने के वजह थोड़ा थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा, बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। ये नहीं, इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रोहरियान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा, आकर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा। तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेले बन की, करवे बन की, कब तक। बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक। आप उतर दो तो बाप दादा भी उतर देगा, कब तक विनाश होगा। क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकते हैं इस सेकंड, लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हो, अब से तैयारी करेंगे तब समापति समय बुलाएंगे। किसी भी कमजोरी के बाद में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, बाप दादा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, प्यार है ना बच्चों से, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते, चाहे अमेरिका हो चाहे गुरुगांव हो, सब दिखाई देते। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, डालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, ऐसा किया ना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो को स्वमान के दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है, मेरा पापा तो कहता है, और सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है, बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं। दाल रोटी संगठन अच्छा, ब्राह्मण जीवन किटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा ले है, लेकिन अभी कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते। कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संगतोष में बहुत आती, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए। लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संकटोष में नहीं हो। आज होली है ना, तो जो संकटोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संकटोष में नहीं हो। हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं है, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहते आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ दिल मुराद हासिल करके देखो। दिल से सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो नहीं सकता। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते। तो आज होली मनाओ, उल्टे रंग को पाप के रंग में रंग लो। अच्छा आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिए तरस पड़ते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, क्यों का कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। दूसरा कारण ये देखा कि अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा, कोई बहुत रायल रूप का भी अलबेला बनते, एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब उस समय मुस्कुराती है, कहती है देख लेंगे क्या होता है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। गाना आज क्यों सुना रही है, क्योंकि चाहो नहीं चाहो जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है, और आपको बनना

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yes.

विधि पूर्वक नहीं, कभी कभी विधि

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: धन तो सबके पुराने है, चाहे जवान है चाहे छोटी और बड़ों से भी कांका कमजोर, चाहे बीमारी पड़ी लेकिन बीमारी की मैं सुस्ता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती क्यों?

1%.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस समय आप हरि का आत्माओं के प्रति रहम, दिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने के वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने सने संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो, चिल्ला रहे भाषा में चिल्ला रही है, शांति दो, सने दो, दिल का प्यार दो, सभी पाप के कौन हो, राइट हैंड हो ना, राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति का अंजलि तो दिलाएगा। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे, कितने तरफेंगे। अभी सभी हद तक की बातों से ऊंचे हो जाओ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Jones.

पहुंच गए।

Сочасне. Не.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश्रय हुई है, पता है कौन सी आश्रय? वो जान तो गई हो, जान गए हो ना टीचर्स, जान गए हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके खुश कराते हैं, लेकिन एक आश ये कि पुरुषार्थ में दीवार गति चाहिए, पुरुषार्थ है लेकिन अभी दीवार गति चाहिए। इसकी विधि Yeah. विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण नहीं आगे। ये कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सीकर में निवारण सोचो। ये सोचो कि जब विश्व के निवारण करने वाली हो तो क्या स्वयं के छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बहुत दुखी है, बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहमाना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय के पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुना तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तरफ रहे। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे, पुकार रहे। आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो, स्वयं आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसलिए अभी समय पर मान रैम के मास्टर सागर बनो।

house, but being a light ski, get a light. So.

0: चिल्ली की
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन रहता है, एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले। इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है शुभ भावना रखी, और कोई नहीं बदलता आज।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे, तो जैसे बच्चों से क्रोध की सकते हैं। मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प से हिम्मत रख, आगे बढ़ने की शक्ति है जो पाप को हिम्मत से संकल्प कर सकती है, करेंगे। और पाप से गिफ्ट लेंगे, गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। अगर क्रोध पर जीत

0: Oye, parta que parvane. Y sé. Sabí. Akshistoke. Suteye.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
2: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय बाप दादा धोपा धोपर बार बार अटेंशन दिला रहे, एक स्टॉप बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ, दूसरा स्टॉक जमा कर, दोनों जरूरी है। तीन, खजाने विशेष जमा करो,

خسرا सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी, उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो, दुआएं का खाता। कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो करके हिम्मतहीन हो करके जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते। तो दुआओं का खाता भी जमाओ, उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा,

0: कुछ करना से कराना है, ये है बेद की सेवा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखा अभी भी

0: heile alles. Heil alles, Herr. See brother, yes, a look at me.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो इस तरह पाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाली आत काम है ना, वो बाबा से सुपुर्द कर दो, बाप को दे दो, बाप ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं ये संकल्प में भी नहीं लूँ, ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको संकल्प को आने नहीं दे, दे दो, वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर दे। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके देगा।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Jane.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले। इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे, तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा हजार कदम

0: ऐसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना, कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज कर। अच्छा, गिफ्ट ली गिफ्ट दी, अच्छा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं। और कुमारों के बिना से

0: charles patao komaro ke pena center charles hota hai nahi charles komar ke fishista ek bahut achhi hai komar jo dhrat sankalp kare प्रैक्टिकल में ला सकता क्योंकि सुकुमार उल्टा तो करेंगे नहीं सुलटा ही करेंगे तो कुमारों में दृढ़ संकल्प की गिफ्ट है चाहती है वो कर सकती है ये गिफ्ट है बाकी जो उसका नाम के हाथ में है लेकिन कुमार गवर्नमेंट भी चाहती है कि कुमारों का सुकुमारों का कुमार नहीं अभी बाप दादा की ये इशारा प्रैक्टिकल में नहीं लाया सारे विश्व के कुमारों का ग्रुप मधुबन में इकट्ठा हो और प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर यहाँ आवे कुमार अपना जलवा दिखा सकते कुमारों का ऐसा ग्रुप साथ ले जाओ कोई कहाँ का कोई कहाँ का कोई कहाँ का और डायरेक्ट निमंत्रण देवे सब देशों के और निमंत्रण देवे डेट फिक्स करे कुमारों में तो बाप दादा की बहुत बहुत बहुत शुभ उम्मीदें हैं और पूरन होनी है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: फॉलो करना तो सहज है ना, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता और अनुभव है सब। Thank you.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेंटर तो सब सेफ है,
4: सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है।
3: फिर भी बॉम्बे बाप का है, बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे।
4: गुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती।
3: इससे बहुत कुछ होना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah, buddy.

شجره. जानने से, मानने से।

Ця правда одє. Ваят. Карни не порти лекен. Yeah.

0: ne facevo un anno.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं, आज कहेंगे बाबा वो मेरे बाबा वो मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, मेरा संसार हो, बहुत मीठी मीठी बातें करते और दो चार घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ गया, बात नहीं आती भूत आता। फोटो है

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जय छोटी।

¡Qué charor! ¡Sandesh, ponche! ¡Ferab, que se me va a ir! ¡Ese no yo! ¡Qué chorro! किसी को भी बेच के कम से कम पता तो पड़े कि हम सब का बाप आया है। अचानक आना है, पता के नहीं आएगा। अपना चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो। Bitch.
Done.

0: अपनी एरिया को चेक करो रायगढ़ के पड़ोसी से। उस द्वारा कराओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुमारियां क्या बननी है? टीचर्स बननी है, इसीलिए टीचर्स में साथ में मिट।

वहां सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास करना है, तो थोड़ा हिसाब किताब पूरा करके अगर आवश्यक हिसाब है चल नहीं सकते हैं इसलिए सेवा करते हैं तो फेल है। सचमुच कोई कारण है, कईयों के सरकमटेंस है लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूं, प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सके। कुमारिया चतुर होती है, भोली वाली नहीं होती। इसीलिए कुमारिया अर्थात स्व उन्नति में हर समय कदम उठाती रहे, सिर्फ नौकरी नहीं स्वोन्नति में अपने सरकमटेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी वो ब्रह्मा कुमारी, वो अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे। तो देखेंगे बाप दादा और योग्य टीचर किटकिट वाले नहीं बनना, योग्य टीचर, क्योंकि योग्य टीचर्स की आवश्यकता है। आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेते लेकिन सेंटर पर जाती है कोई प्रॉब्लम हो जाती, हैंड्स तो नहीं बन सकेंगे ना। कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्विघ्न साथी, अपने को एडजस्ट करने वाले, एडजस्ट

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

있어.

sleep.

0: खुशी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फर्ज

Está suaro.

0: Esta ist die Sorbonne. Umana ki ekagrata. Ki shakti. Sahaj frishta bana de. To ekagrata ki shakti ko barao. Malik ban ki stage ki seat par sit raho. Jab seat hoti hai to aap seat nahi hote. Seat nahi hai to aap seat hote.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का। मैं तो आप साधारण नहीं हो, पूर्वजो
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: जीवन में करनी है। दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे, तैयार है, हाथ उठाओ। कुछ भी पेपर आवे, लेकिन चार बातें अपने जीवन में करनी है। पीछे वाले पक्के है ना, कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। एक बात सदा शुभ चिंतक, सॉरी देख वा सुन, रैम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है, कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन सहयोग देना ही। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पका रहेगा ना, सहारे दाता, रैम दिल पर सहयोग दो, उससे किनारा या करना नहीं करना, कृपया करना। परवस के ऊपर कभी करना नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता। शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा मेजॉरिटी बच्चों में अमृत युग जो मौज का युग है उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति, अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसीलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है, मेरा काम है। शुभ वायुमंडल जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हो? खुशबू फैलाते हो ना, बदबू सहन नहीं होती। कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो, ऐसे साधारण वायुमंडल अशुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Shopee.

Swastika.

Sit down.

Carioca, aber gesoffen.

समय सफलता

Coração.

Top Shelf.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Tchau.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तीन मास का अभ्यास, सदा काल का अनुभवी बना देगा। अगर अपन ने उमंग उत्साह से किया तो मजबूरी से किया, तीन मास पास करने फिर तो सदा नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा?
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादर ने पहले भी सुना है, अगर दिल संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज बड़ी चीज हो गई ना। Sons.

जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता। कहते क्यों हो, गलती से कह देते हो। जब मार जीवा बन सरनेम क्या है, पुराने जन्म का सरनेम है वा पीके का सरनेम है? क्या अपना लिखते हो पीके या फलाना फलाना? जब जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? ये पुराने तो पराए संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए। चलाते भी है।

Sabí que te una.

0: Sankalapka. Apane se.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हर मोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को एकदम अशरीरी बनने का ड्रिल जरूर करना है, क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा। तो ये ड्रिल कोई के समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो, पानी की प्यास लगती है, क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझ के उठेंगे ना। तो ये एक मिनट अशरीरी बनने की ड्रिल, ये प्रैक्टिस जरूर
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Love.

0: हो सकता
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अब ये दो बातें दुनिया में विकसित होनी चाहिए। एक गीता का भगवान और दूसरा सर्वव्यापी नहीं, ये दो बातें धीरे धीरे विकसित हो जाए। जैसे अभी ब्रह्मा कुमारियों के बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, जैसे अभी दुनिया

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारी है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार।
1: Fuck.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों को, ये तो क्यों को बाप दादा देख। सोचो जो आप कोटो में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना, तो बाप दादा का आप बच्चों में उम्मीद है ना, वो तो आपकी अवस्था देख करके ठीक हो जाएंगे, उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज में आएंगे। क्या है ना वायदा, ये जब साथ रहेंगे साथ चलेंगे तो साथ में सेवा के साथी भी तो होना, मदद मिल जाएगी। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना, हमें कल पहले भी थे, अभी भी है और हर कल हम बनना ही है, ये तो पक्का है ना? कि दो साल बनेंगे तीसरे साल जाएंगे, ऐसे तो नहीं। सदा याद रखो हम ही निमित्त है, हम ही कोटो में कोई, कोई में कोई है। कोटो में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में कोई।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जाती और

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Not

percentage.

0: जीवन में प्रभाव इसलिए चमक का खाता कोई कोई समय का जमा होता है लेकिन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: So

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sigh.

0: इसीलिए मिक्स हो जाता है। inte se frisk ut igen. Och att det är jag med barnflyg.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sim.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Thank you.

0: a poder motivarme por sí.
1: खांसी के लिए
2: दादी गए थे बगीचे में, दादी तीन दिन रहे उसी कारण से, और उसी टाइम में दादी ने दृष्टि ज्ञान दिया था, अभी
1: भूल जाए दादी गई थी इनो की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल और प्रसाद रेड्डी।
0: ये तो कल पहले इनो का भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दाबा दृष्टांत देवे कि वीआईपी सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

sonnenneidet.

0: quiero fame con amor a
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज़ करके देख, पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता, अचानक के खेल होने कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते, कहते हैं कि समय थोड़ा और जाएगा ना तो वैराग तो होगा, तो वैराग के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने कह दिए कि किसकी भी अंतम काल हो सकता है। अभी अभी देखो कितने भ्रमण जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है
2: आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Thank you.

Prithvi. जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें जिसमें इंटरेस्ट भी आता है समाचार तो अच्छा संसार समाचार जैसे अच्छा लगता है तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है।

Os...

समाचार है, आपका कुछ नहीं सुनते। अच्छा सुना, कर कुछ नहीं सुनते तो समाचार कहाँ जाएगा? बुद्धि में तो गया ना, श्रीमत में पारम मत मिक्स, क्योंकि जो बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? और उसकी आदत डाली, मानो एक बार ही आपको समाचार सुनाए, आपको भी बहुत अच्छा लगा। नहीं बात ऐसा भी होता है, ये पता तो पल गया, लेकिन एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा, आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आके सुने। क्यों? कि आपने सुना, वाह, तो उसको समझा। तो ऐसी बातों से उसको भी मुक्त कर, सुन करके इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन अगर सुनते हैं तो कर सकते हो कुछ, तो करो। सुनो, या इतनी ताकत है आप में जो उसको सदा के लिए फुल स्टॉप लगा, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगा, बिल्कुल उस व्यक्ति से दृष्टि से समाचार सुनने वाली आत्मा के प्रति संकल्प गिरना पाओगे। इतनी पावर है आप में, तो सुनना नहीं हुआ उसका कल्याण करना, लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी। थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा होते होते एक गिर ना पाओ या चार चलन में अंतर आ जाए।
sana.

你怎么明白的？Sí.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आती माला भी रुकी हुई? ब्रह्मा बाप ने कहा, चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज कर दी गई, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज कर दी गई और सबकी चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Ήτανε κουρούσε και αμελτέ βαρτά.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, देखते हैं पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक आता है, कोई भी समय

0: ich sollte हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होने चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है, लेकिन अटेंशन परिवर्तन भी है, ये चीज कर। अलबेलापन तो नहीं आता, हो जाएंगे ये क्या बड़ी बात है। इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुश भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन पूरा हो। ऐसे नहीं सोचे ये तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता। इसलिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

अच्छा को।

से और ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे।

0: और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहिए
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक सेकंड में चारों ओर हलचल है, खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर, इस सृष्टि पर तो चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां जाओ वहां स्थित कर सकते हो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पोस्ट ज्यादा नहीं खर्चा करना, बचा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की ना, तो विघ्न कितने आए और आपको कुछ हुआ तो बाप दादा चतुर छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया मुखी देता है, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारिया अटल बेकारी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय बिना बिना विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन चतुर छाया रही ना कोई नुकसान हुआ, दुनिया वाले हंगामे में डर करके सब चोर करके भाग गए। जब पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, सब भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट भर गया, समाज भर गया, सभी डर के मारे जो अच्छी चीज लगती थी ना छोड़े कैसे, प्यार होता है ना उसे, तो जो सिंधी लोग एंटी थे आपने जो उस समय एंटी थे वो भी देते थे और सामान भी दिया, जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना वो हाथ जोड़ करके देखे गए, तो आप यूज करो। और दुनिया वालों को हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सारा बैल गाड़ी सब्जियों की थी, 5 रुपए में सब्जियां, कितने मजे से सब्जियां।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

hassen gehe. Hassiert ihn. Warte, Konzibate. Yes.

मेरा नहीं कह सकते। जीवन के संस्कार शूद्र जीवन के संस्कार।

I was gonna

0: समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सबसे परिवर्तन तो नहीं ना, जो भी छोटी

еще.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सफल करना है। सफलता मुहूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असर
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा जो बाप दादा ने समय पर तो समय प्लान दिया है वो बच्चों ने से किया है, कर रही है। इसके बाप दादा सभी बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रही। हाँ, भले बजाओ।

0: Api warsa na ilia. To kapleng. Pap ko remat. Pachoka. Tok. Ashantika. Vayu mandal dekar. Aur pap. Aur aap. Chan. तो अति में जा नहीं बिना अति के अंत नहीं होता ऐसे समय पर आत्माओं को ये अनुभव कराओ सिर्फ सुनाओ नहीं अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा तेरा आप सभी भी यही पूछते हो ना कि ये पाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी तो प्रभा कुमारियों तक पहुंचे लेकिन प्रभा कुमारियों को सिखाने वाला कौन ब्रह्मा कुमारियों का ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन अभी समय को समय लाने का समापति करनी है ना
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन, कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन, जैसे ये साइंस का साधन कार्य करती है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगी। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा, जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, ये टीपी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार खत्म हो नहीं है, ये सब साधन किस आधार पर है? लाइट, जो भी सुख के साधन है, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर। तो क्या आपकी अध्यात्मक लाइट, आत्म लाइट ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के कैच कर सके। अभी क्या है,
2: जो पढ़ नहीं चाहिए।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: So

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Yeah.

Summer.

कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। जैसे देहअपमान की नेचर नेचुरल हो गई,

Yeah.

लोगों को दिखाई देती।

प्रशंसा बढ़ी।

Stop la gana, Bobby Pinto.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी अपने अंदर चेक करो, मेरे वृत्ति में किसी आत्मा के पृथ्वी कोई कहीं पर

Sheesh.

जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं है, नॉलेज फुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेज फुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है, क्योंकि अपने में मोटाव व्यर्थ संकल्प याद की पावर कम नुकसान होता है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो ये तो आत्माएं और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता, लेकिन मूल है वृत्ति। समझते हो कि जल्दी जल्दी पाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपने वृत्ति को अपने लिए दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेज फुल भले बनो, लेकिन अपने मन में धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है किचरा। वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया वाणी से परिवर्तन, सिक्या से परिवर्तन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Usra.

वायुमंडल द्वारा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है, चारी बातों में निश्चय विजय आवश्यक। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति में रहे कि सब
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन। क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्रह्म जीवन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yep.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा।

Jimmy Ron.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: और आप सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति, ये है ना? तो अब गुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को अपना बनाओ, रावण की चीज को संभाल के रखा है और पाप की चीज को गुम कर देते हो क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, ये पाप अच्छा लगता है। कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय के स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा है। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं।

भी पाप कहती है कि पाप का सभी बच्चों से वायदा है। जब पाप का मेरा बाबा दिल से अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो पाप भी कहते हैं। जो भी हो जैसा भी हो मेरा

0: ये तो जाना ही है। सब बाप चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना, सजनी बन के चलना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण बोल, अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है, प्रसाद को कोई मैपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है, पाप दादा विशेषता को बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैपन को समाप्त करो। ये सूखा मैपन है। अलौकिक जीवन में ये मैपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिन सेट हो, किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुराने का स्टॉक है, खत्म तो नहीं हो गए। मुस्कुराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है, जोश वाला चेहरा दूसरा देख के हट जाना चाहता है। और मुस्कुराए हुए चेहरे के नजदीक जाने जाएंगे तो आपको अभी का मुस्कुराता हुआ चेहरे का फोटो निकाल के देवे, वो फोटो अपने साथ रखेंगे या कागज का रखेंगे या दिल का।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम योग श्रेष्ठ है, वो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन ये रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुखमय बना दे, ये उमंग नहीं आता दुख देखने चाहते दूसरों का दुख देख करके भी। आपके भाई है, आपके बहने है, दुख देखना अच्छा लगता है, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सब सेवा में लग नहीं लग जाओ, ये प्रोग्राम किया चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सी फॉर बनो, चाहे दृष्टि से चाहे अनुभूति से चाहे आत्मक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, छियासठ वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है 66 वर्ष, ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए, ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी है, कब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए, तो घर का दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे, इंतजार कर रहा तो सेवा में एडिशन करो, इससे बाप दादा गारंटी दे रहे हैं कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, बारिश क्वालिटी की बारिश पड़ेगी, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, कहना ही नहीं पड़ेगा अभी ये कार्य होना है इसमें सहयोगी बनो, नहीं सहयोगी स्वयं ऑफर करने वाले होंगे, लेकिन साधारण बहुत कर लिए, वर्गीकरण के प्रोग्राम भी बहुत कर लिए, जो आए वो छाप लगे 9 लाख की छाप लग जाए। समझा क्या करना है?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है? जानते हो?
2: स्वरूप सोचने वाला नहीं, स्वरूप।

0: स्मृति स्वरूप है और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आदि अनादि और
1: I see.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Shit.

0: Boccati. Chi è? Mira. Fresta. Artat sangalap. Pol. Karam.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंग उत्साह
2: I'm not afraid to

0: सभी की भ्रमण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आप

Safe. Man.

por puro Dios.

0: कोई मांगे नहीं मांगे। लेकिन दादा कभी ये नहीं देखता कि ये मांगे तो थे
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो।
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती, इसीलिए देखो कोर्ट में भी तराजू निशानी तराजू इसलिए दिखाती है, एकाग्र घंटा हो जाता तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों और हट चलो, उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां चाहो वहां एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती, सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय मुद्दे सेवादारी सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये राइल लो बाता कि मैं इतना कुछ करता हूं, सब रूप से मदद करूं, धन से मन से धन से और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता, फिर भी मेरा नाम कभी भी वर्णन नहीं करती। ये जिज्ञासा बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? सुनते मैं हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं। वो अपमान के रूप में आ जाए या बहुत नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना, कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ काम और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मक रूप में देखना, वृष्टा रूप में देखना, वो वृत्ति दृष्टि। और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में, तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, ये प्योरिटी की निशानी। वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों में ये धारणा हो, कोई क्या भी करता है दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा बाप ने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है जो ज्यादा बोलते हैं
0: रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पहले बार आई हो तो कमाल करो, क्या कमाल करो, पहले नंबर का पुरस्कार ऐसे भी निकलने हैं तो आप ही दिखाओ। बाप दादा की मदद सभी को है, दीवार पुरुषार्थ आने से ही साधारण पुरुषार्थ नहीं, दीवार पुरुषार्थ करो, करना ही है, बनना ही है, आगे जाना ही है, ये दृढ़ संकल्प रखो। एग्जाम्पल

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप परमात्मा के पीड़ित

Csak meg téredél.

reality. Kaswaropa. Kitna maane. Sabhi pahunch gaye.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: दुनिया वाली कहती है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड और वो भी

सिस्ट रही है, जानते हो ना, अपना अनादिकाल देखो, अनादिकाल में भी आप सभी नजदीक रहने वाले हो। देख रहे हो अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले सभी है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्रोग्राम तो बड़े की है, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं काम ने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे, निकल आएंगे 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे, कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो, जरूर क्या है

सभी बच्चों को, सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहिए, क्यों जब

बाल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे

परिवर्तन कर सकते।

So

Sick.

श्रेष्ठात्मा देवात्माओं के सबसे भी श्रेष्ठ।

स्वरूप से समान संपर्क में हो, हर समय

0: सबसे सहज पुरुषार्थ
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस तार्स भी नहीं जा।

güey. Hartático, tristiti. Os tristique. Felpavarse. Come on.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सर्व द्वारा सहयोग

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो बैठे हो लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो पाप का इशारा डायरेक्शन श्रीमद कर सकेंगे। टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है तो वर्तमान समय

叫，杰西叫，菲西，马纳尔波蒂哥，控制可以。जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है, जहां जाओ जब तक जाओ तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक बात, बाप दादा ने मैं चारटी में देखी, मैं चारटी I'm sorry.

Ya te vi. En marzo.

creepy. Beep.

से दूसरा उससे तोड़ा। फिर बादशाह तो आजकल सबके राय हो गई, तो राय रूप में क्या कहते हैं, बात ही ऐसी है ना दोस्त, सर्विस करते क्योंकि क्रोध होता है तो के बीच में अकेला नहीं होता है, तो के बीच में होता है, तो दिखाई देता है। Baby.

Bądźmy o tym.

sempre em teria que roubar. Yeah.

Masih kena rakar tinggi. Sampai.

0: सकते हो। सच्ची दिल पर भी साहब राशि होता है। बाप दादा रिटर्न सौगात में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अब तो इवा रेडियो ना, इवा रेडियो कोई भी समय आवे, कैसा भी समय आवे, लेकिन ब्रह्मा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए उन आत्माओं की विशेष
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।